मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा तुम शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा तुम ना मानो तो जाने दो। तोबा तोबा

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

मिलता है आपको पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर? ये भक्ति करनी है ना तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

आसमान से एक बूंद, बारिश की एक धार गंदे नाले में पहुंची, गंदा पानी हो गई। आसमान से आई हुई एक बूंद मिट्टी में पहुंची, सो गई। आसमान से आई हुई एक बूंद कमल के पत्ते पर पहुंची, मोती जैसे चमकने लगे। आसमान की एक बूंद चातक के मुंह में पहुंची, उसको अमृत मिल गया। खेयन ऐसी कुसले में ऐसी, अनंत नानी अनंत दंसी, जसन सिनो चकु पहेठियस, जाना ये धम्मम च धीम चपे। जब वो स्वामी ने जब पूछा कैसा वो ज्ञान, कैसी वो श्रद्धा, कैसा वो सील, गुरुदेव के विषय में यदि बोलना हो तो प्रवीण ऋषि की जो स्थिति होती है उससे अधिक भावाकुल स्थिति सुधर्मा स्वामी की, कि पूरी दुनिया जिसने उनकी चेंज कर दी, और वो सारे 30 साल के अनुभूतियों को, इस जन्म के 30 साल के, सुधर्मा स्वामी कोई भगवान महावीर के साथ केवल इस जन्म के 30 साल नहीं, उनके जन्म जन्म उनके साथ है। और उस समय का परमात्मा का वो सारा अनुभव शब्दों में व्यक्त करना द बिग चैलेंज। जो तीर्थंकर परमात्मा से सुना वो कहना, विरासत को आगे पहुंचाना है। जो मुझे मिला मैंने आगे पोस्टमैन बना। सुधर्मा स्वामी ने तीर्थंकर महावीर से जो सुना वो आगे पहुंचाया, वो आगम हो गया, जिन शासन का आधार बन गया, लेकिन वो केवल डिलीवरी पासिंग थी। प्रभु से लिया आगे पहुंचा दिया, मैक्सिमम किया तो इतना किया कि उसको थोड़ा सा गुमफीत कर दिया, संपादन कर दिया। लेकिन तीर्थंकर महावीर के विषय में बोलना, रोबी आहासुयम जहानी संतम जानासीनम भिक्कु, जैसा तुमने, जैसा तुम जानते हो, जैसा तुमने उनको उनको सुना है, उन्होंने बोला हुआ सुनना और उनको सुनना, मुझे लगता है यदि हम आदमी क्या बोलता है इसको सुनने के साथ आदमी को सुनने लग जाए तो संघर्ष की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाए। व्यक्ति को सुनना और व्यक्ति ने बोला हुआ सुनना, व्यक्ति को सुनना नेचुरल है और व्यक्ति को सुनना ये भक्ति है। अर्जुन ने जो गीता सुनी
वो जो आज हम लोग पढ़ते वो गीता नहीं है, उतनी ही नहीं है। उसने श्री कृष्ण को सुना, इसलिए वो श्री कृष्ण के शरण में चला गया। हनुमान ने राम को सुना, गंधर्व ने महावीर को सुना, महावीर जो बोले वो भी सुना, और उसको इसलिए कहा गया आसुयम बोहि जानी संतम शांति में, कि दूसरे को सुनना हो, दूसरे ने जो बोला है आप स्वयं को चेक करें। जब भी आपकी बातचीत चलती है उसकी बात पूरी होती है उसके पहले तुम्हारा सोच चालू होने कई उत्तर दे उन्होंने उन सच में देखने जाए तो उसमें आप सुनते ही नहीं हो, स्वयं को प्रिपेयर करने में लग जाते हो। और तीर्थंकर महावीर को जो सुना है, तीर्थंकर महावीर से सुना और तीर्थंकर महावीर को सुना, इन दो शब्दों में, इन दो वाक्यों का अंतर यदि समझ में आ जाए तो विरथी क्या है समझ में आएगा। पूरे आगम वो है जो तीर्थंकर महावीर बोले, और विरथी वो है जो तीर्थंकर महावीर है। गुरुदेव के प्रवचन में एक प्यारी सी कहानी गई, पढ़ना आनंद प्रवचन, कि सेठ है राजा जिसकी चार पत्नियां की चार रानियां हैं, ज्यादा भी हो सकती है, विदेश यात्रा के लिए जा रहा था, तो सबको कहा उसको कि तुमको जो जो चाहिए वहां से लिस्ट बना करके दे दो। सारी लिस्ट बना के दी। अब उसने वैसे वो पॉकेट में पॉकेट बंद करके दी ना, कि हमारी लिस्ट तो जान नहीं मालूम पड़ जाए, बंद लिफाफा दे दिया। वहां पहुंचे मुनिम के पास, लिफाफे सौंप दिए कि भाई इसमें जो जो लिखा है वो परचेस कर ले, उसके अलावा भी बहुत सारा परचेस किया। उस मुनीम ने तीन पॉकेट खोले, चौथा पॉकेट खोला और चौथा पॉकेट वापस राजा या सेठ को सौंप दिया। बोले क्या हो गया? बोले ये चीज तो बाजार में मिलेगी नहीं, ये चीज तो बाजार में मिलेगी नहीं। बोले ऐसा क्या है? बोले बाकी सब मैं परचेस करके लाता हूं, बोले पर ये चीज बाजार में नहीं मिलेगी। और उसने भी वो लिफाफा पढ़ा, उसके आंखों में से आंसू के दो बूंद उस लिफाफे पर गिर गए। मुनिम ने जो जो लिस्ट थी वो परचेस किया, राजा या सेठ ने और जो जो परचेस करना था भरपूर परचेस किया, सब परचेस किया। अब जिसका जिसका जो पार्सल ऑर्डर थी वो पैकिंग करके रख दी। घर पहुंचा तो सबने पूछा कि हमने जो लिप दे, बोले तुम्हारा पैकेज वापस, ये तुम्हारी लिस्ट, ये तुम्हारा पैकेज, ये तुम्हारी पार्सल, और बाकी सब लेकर के ये उस पत्नी और रानी के पास जाने लगा। बाकी बहुत था, वो स्वयं भी उधर जा रहा था। तीनों ने ऑब्जेक्शन लिया, बोले ये कैसे हो सकता है, इतना सारा उसके पास। तो बोले तुमने जो मांगा तुमको दे दिया, तुमने जो मांगा वो तुमको दे दिया, उसने मुझे मांगा उस लिफाफे में केवल इतना ही लिखा था
कि नाथ आप वापस आ जाना है, आप सुरक्षित वापस आ जाना है, वही मेरी गिफ्ट है, आपका आना ही मेरी गिफ्ट है, आप ही मेरे उपहार हो। उसके लिए मैं उपहार हूं, तुम्हारे लिए वो उपहार है, तो तुमने जो मांगा तुम ले लो। उसने मेरा उपहार मांगा है, तो जो मेरा है वो सब उसका है। क्या बोलेंगे? मराठी में वाक्य चलता है, देनाराने देत जावे, घेणाराने घेत जावे, घेता घेता घेता घेणाऱ्याचे देणाऱ्याचे हात घ्यावे। ये अर्जुन कर सकता है, और अर्जुन जीता तो इसलिए जीता है, श्री कृष्ण जो दे सकता था वो दुर्योधन ने लिया, और अर्जुन ने देने वाले को ले लिया, दोनों ऑप्शन थे, या तो मुझे चुनो या ये मेरी चतुरंगिनी सेना ही इसको चुन ले। और ये बारी है सुधर्मा की, कि जिसको उन्होंने जिया, जिसको उन्होंने पाया, उसको कहना हाईली इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल, असंभव है कहना, अशक्य है कहना, बुद्धि से अशक्य है कहना। बुद्धिमान किसको कहते हैं और भक्त किसको कहते हैं? Who are you? हाँ, दोनों नहीं होते बंदो, नहीं ना। बुद्धिमान कभी भगत नहीं होता, भगत कभी बुद्धिमान नहीं होता। अगला सीक्रेट भी सुन ले, ज्ञान भक्त भक्त के पास ही होता है, बुद्धिमान के पास तो केवल कचरा होता है। ये शास्त्र की पंक्ति है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है उसको ज्ञान मिलता है, जिसके पास बुद्धि उसको ज्ञान नहीं मिलता है।

0: तुम
1: बिना बुद्धि के। आचार्य मान तुम कहते हैं, ध्यान में रख जाए, जिस समय तुम्हारी संतति ज्यादा अक्लमंद हो जाती है ना, तब तुम परेशान हो जाते हो। हेलो, जब तक वो अक्लवान नहीं है तब तक स्थाने प्यारो लागे। इसलिए कई बार तो थे बोल जाओ, ए ज्यादा अक्ल दिमाग में चला मारा कने, मुझे थाने भी उरो दिमाग नहीं चले। और ये भक्त की बात है, बुद्धिमान के लिए जो अशक्य है। रिपीट, बुद्धिमान के लिए जो, भक्त के लिए वो सहज है। बुद्धिमान के लिए जो अशक्य है, इम्पॉसिबल है, वो भक्त के लिए शक्य है। लेट मी गिव सिंपल एग्जाम्पल, सिंगल एग्जाम्पल। इस किनारे से उस किनारे पर जंप लगा करके पहुंचना कोई बुद्धिमान स्वीकार कर सकता है? कोई अक्ल वाला ऐसी हिम्मत कर सकता है? नहीं ना। धक्का जैसा लोगा साथ चार महीना रहो ना, कोई अक्ल वालों कर सके? हेलो, थे भी प्रदूषण रहा बाद आ रहा था, थे भी अक्ल वाला को नहीं। अक्ल मन सब घर बैठ गया, दो महीना सुन लिया भी बहुत हो गयो, सगड़ा अक्कल वाला घरे बैठे हैं। यस, वही कह रही हूं, थे आठे आ रहे मुझे, थे अक्कल नसनी मुझे ब्याक्कल होनो भी रहे, अक्कल नसनी मुझे भक्त होनो भी रहे, दो ही रहे है ना। था कहने अक्कल को नहीं, पर थे ब्याक्कल को नहीं हो कही, था कहने अक्कल को नहीं है लेकिन थे ब्याक्कल नहीं हो। वे अक्लमंद है, ज्यादा अक्लमंद किने के 1981 का चतुर्मास नवीपेट में संपन्न हुआ और 1981 का चतुर्मास संपन्न होने के बाद गुरुदेव परीक्षा बोर्ड पर पधारे। उस समय केवल एक बिल्डिंग थी छोटी सी, बाकी कुछ नहीं था। चौमासे के बाद थी और चौमासे के बाद भी गुरुदेव ने प्रवचन शुरू करे, करे प्रवचन शुरू करे केशर गुलाब मंगने। नेमा काका थे, गुरुदेव ने उनको कहा कि बखान करना है, आठे जगह को नहीं, बोले पधारो। अब रोज रोज जो है गुरुदेव को हम डोली में वहां लेके जाते, गुरुदेव को हम नौपिष ठिकाने पर आ जाते। अब हम सारे अक्कल वाले लोग, समझ में नहीं आता था, 40-50 लोग रहता था मैक्सिमम। कितने लोग? 40-50 लोग रहता मैक्सिमम के लिए बताने, लेकिन गुरुदेव प्रवचन देवन जो होता था। अब अक्कल वाले ने खुजली आवे, हेलो आवे, मैंने खुजली आई। और मैंने गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव 81-82 चल रही है, 25 लोग नहीं आवे सुनने, वे भी सगा रिटायर, जिन्हें सुनियो तो भी कहीं फर्क नहीं पड़े, नहीं सुनियो तो भी कहीं खेनी वो करो। लेकिन वे भक्त के अक्कल वाले थे, हम बेअक्कल अक्कल वाले थे। और गुरुदेव ने जवाब दिया है, बोले परमात्मा की वाणी परमात्मा के शासन के रोटी खाता हूं। क्या कहा? परमात्मा के शासन के रोटी खाता हूं और परमात्मा की वाणी की ड्यूटी नहीं निभाई तो कर्जा कहां चुकाऊंगा। गुरुदेव को समझने में और सभी सीनियर लोगों ने देखा हुआ है, गुरुदेव के यहां डेली भले ही 92-28 मार्च के आखिरी समय में भी आगम वाचना चल रही थी, क्लास चलता ही चलता था। गुरुदेव ने कभी उसको खंड पढ़ने ही नहीं दिया। पता नहीं वो श्रद्धा है तो सुधर्मा स्वामी के लिए, हनुमान के लिए जिसे वो शक्य है, बुद्धिमान के लिए शक्य नहीं। कोई दिन थाने मने सलाह दे तो ना तो अटे हुंकार भर, तो एक हुंकार भर ने जंप लगाईला अगला किनार मधे पुगेला तो मने डुबोनो चावे। इसे कदी हुई हुई कही ये बुद्धिमान लोग बोलते निश्चित रूप से बोलते, लेकिन हनुमान ने पूछा नहीं। अशक्य को जो शक्य कर देता है वो भक्त होता है, जो शक्य को शक्य रखता है वो बुद्धिमान होता है। लेट मी रिपीट, अशक्य को जो शक्य करता है वो भक्त होता है। जो अशक्य को शक्य करता है वो भक्त होता है, और कर करके के भी उसके मन में कोई अहंकार का स्पर्श नहीं होता है। और जो बुद्धिमान होते हैं वो करे उत्तो जितो कर सके, पर अहंकार उत्तो करे कि जितो कर नहीं सके, या पहचाने थके मारी हम करते उतना ही है जितना पॉसिबल है, लेकिन अहंकार हमारा इम्पॉसिबल कर देता है। भक्त करता इम्पॉसिबल है लेकिन अहंकार का स्पर्श उसको नहीं होता है। सुधर्मा स्वामी के लिए आहा स्वयं जाना सीनम देखो उसको कहना है, और इसलिए विरुद्ध हुई सुधर्मा स्वामी के अनुभूति के माहिर है। जिस महावीर को सुधर्मा स्वामी जिए वो ये महावीर है। ये त्रिशला के जाए नहीं है, ये सिद्धार्थ नंदन नहीं है। विरथोई में त्रिशला के जाए महावीर गाथा में चलते हैं, ये तो सुधर्मा स्वामी ने जिसको जिया जिसको पाया, ये सुधर्मा स्वामी से जन्मे हुए महावीर है। इस आस्था के साथ ही अनुष्ठान है रामेश्वर, इस आस्था के साथ ही अनुष्ठान है कि उनके अनुभूति से जन्मे हुए महावीर हमारे अंदर महावीर की अनुभूति को जन्म दे जाए। बुझा हुआ दिया मेरा है, जला हुआ दिया तेरा है। बुझा हुआ दिया मेरा है, जला हुआ दिया तेरा है। तेरा स्पर्श मेरे दिए को हो जाए, मेरा दिया भी जल जाए। इस आस्था के साथ ही गाना है। सुधर्मा स्वामी का भक्ति का दिया जला हुआ है, हमारा बुझा हुआ है। दिया तो है, तेल भी है, बाती भी है, पंती भी है, लेकिन जला हुआ नहीं। वो दिया जल जाए, और इसलिए इस दिए का जलना एक त्योहार है। और मेरी बात स्वीकार कर सको तो सच है, जिस दिन तुम्हारे अंदर में भक्ति का दिया जलता है उसी दिन दिवाली होती है। बाहर के दिए जलने से दिवाली नहीं होती है, अंदर का दिया जलता है तो अमोषा भी पूनम क्या दिन हो जाती है। और ये उनका दिया जला हुआ है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर इस सुधर्मा स्वामी का जला हुआ दिया है। ये चैलेंज है मेरे लिए, तुम्हारे लिए, थाने को नहीं, मने। सत्ताईस दिन में विरथी को, विरथी का रस दो बूंद के रूप में आपको चखाना, ये चैलेंज है। ये चैलेंज है, इसलिए मैंने सुबह तीर्थेश्वर श्री महाराज को कहा है। अभी तक तो जम्बो स्वामी चल रहे थे, थोड़ा जल्दी शुरू कर दीजिए संपुट, मुझे मैंने बोलो ना थोड़ा टाइम मिले ना। खेयन ये से कुसले में से, वो स्वाति की बूंद सीप में पहुंचे तो मोती बन जाती है। सांप के मुंह में पहुंचे तो जहर हो जाती है। बादल के हाथ में नहीं कि बूंद कौन झेलेगा, बादल के हाथ में नहीं कि बूंद कहां कौन झेलेगा, लेकिन तीर्थंकर एक ऐसे महामेघ है, तीर्थंकर एक ऐसे महामेघ है कि उनकी बूंद चाहे सांप के मुंह में पहुंचे, चाहे सीप में पहुंचे, चाहे गंदे नाले में पहुंचे, वो बूंद गंदे नाले को गंगा बना देती है, जहरीले सर्प को अमृत बना देती है। इसलिए कहा खेयन ऐसे कुसले में ऐसी, एक शब्द की यात्रा में इतना समय गया है। खेयन क्षेत्रज्ञ, खेत को जानने वाले, सामने की पात्रता को जानने वाले, सामने की योग्यता को जानने वाले, यहां पर कौन सी बूंद की जरूरत है इसको जानने वाले, अर्जुन मालिक के लिए कौन सी बूंद चाहिए, इंद्रभूति गौतम के लिए कौन सी बूंद चाहिए, सुधर्मा के लिए कौन सी बूंद चाहिए, शाली भद्र के लिए कौन सी बूंद चाहिए, राजा श्रेणी के लिए कौन सी बूंद चाहिए, ये जानने वाले। इसलिए कहा खेयन नहीं क्षेत्रज्ञ, वो कौन से क्षेत्र में कौन सा बीज बोना, ये जिसको पता चलता है वही खेती कर सकता है। केवल बीज बोने की अक्ल नहीं लगती, बीज कहां कौन सा बोना ये अक्ल लगती है, और कैसे क्षेत्र गए वो कल्पना तो करो। जो लड़ने के लिए आया उसमें ऐसा बीज बो दिया कि वो चेला बन गया, और हम ऐसे बीज बोते हैं कि जो प्यार करने के लिए आया वो नफरत करने लग जाता है। वो ऐसे क्षेत्र के हैं कि रेगिस्तान में भी कौन सा बीज बोना कि रेगिस्तान नंदनवन हो जाए। इसलिए कुशल यानी मास्टर, केवल क्षेत्रज्ञ नहीं मास्टर है, द एक्सट्रीम मास्टर, जो भीख मांग करके जिंदगी गुजारता था उस गोशालक को भी उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। क्षेत्रज्ञ, और सबसे बड़े जिंदगी में कोई आवश्यकता है तो क्षेत्रज्ञ। कहां कौन सा बीज बोना है, कैसे बोना है, उसमें मास्टर होना है। कहिए नहीं ऐसे कुशले महेशी, वो ऋषि नहीं है महर्षि है। ऋषि केवल क्षेत्र को जानता है, बीज बो सकता है, लेकिन कैसे बोना कई बार उसको शक्य नहीं होता है। मैं अभी अभी आपके पास क्लास लेके पहुंचा, उस क्लास में मैंने एक बात कही कि दुर्योधन भयंकर कि चंडकोशिक भयंकर, चंडकोशिक भयंकर, दुर्योधन को कन्विंस करने के लिए श्री कृष्ण गए, शांति दूत बन करके गए, समझौता का प्रपोजल लेकर गए। एक पल के लिए कल्पना करो, एक पल के लिए कल्पना करो, यदि दुर्योधन के पास तीर्थंकर महावीर जाते तो शांति दूत बन जाते कि क्रांति दूत बन जाते? क्रांति दूत, चंडकोशिक को जो चेंज कर सकता है, जो चेंज होने के लिए तैयार नहीं, जो चेंज करने वाले को काटता है, जिसने कभी चेंज होने का सोचा तक नहीं, सपने में सोचा नहीं, दुनिया के सारे भगवान, दुनिया के सारे भगवान भक्ति करने वाले को वरदान देते हैं और तकलीफ देने वाले को शाप देते हैं। यस और नो? जितने तुमको शास्त्र पढ़ने पढ़ लो तुम, तीर्थंकर महावीर उसको काटने वाले को भी कृपा देते हैं, शाप नहीं देते। और ऐसी कृपा बरसाते, ऐसी कृपा बरसाते कि वो चेंज हो जाए। ज्ञानेश्वर मावली ने कई महावीर को जिया है, इसलिए गीता का श्री कृष्ण कहता है कि मैं दुष्टों के विनाश के लिए जन्म लेता हूं, खल विनाश आया है। लेकिन ज्ञानेश्वर मावली कहते हैं खड़े वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। ज्ञानेश्वर खड़ को दुष्ट को मारने की बात नहीं करते, वो कहते उसकी दुष्टता चले जाए और वो सज्जन हो जाए। भगवान महावीर चंडकोश को मारते नहीं है, कन्विंस भी नहीं करते, 360 डिग्री चेंज ही नहीं, 360 डिग्री 100% चेंज, इसलिए उनको महर्षि कहते हैं। कहिए नहीं ऐसे कुशले में ऐसे जसन सिनो चक्कु पहे ठियस, यशस्वी है लेकिन राज क्या है? पहे ठियस, रास्ते पर नजर है, चक्कु पहे ठियस, नजर कहां है उनकी? रास्ते पर है। अपनी नजर कहां है? आपको पूछ रहा हूं, बहुरानी को बहुरानी बनाने पर नजर है कि बहुरानी को नौकरानी बनाने पर नजर है? कोई नहीं बोली ना। इसको कहते चक्कू पहेठियस। बहुरानी को बहुरानी बना के रखना है, चक्कू पहेठियस है। पुत्र को पुत्र बनाए रखना है, चक्कू पहेठियस है। जिस रास्ते पर चला हो उस रास्ते पर नजर लगाए रखना, ये चक्कू पहेठियस है। जिंदगी में असफलता का सिंगल रीजन है, जिंदगी में असफलता का सिंगल रीजन है, चलते किसी रास्ते पर है, नजर और किसी रास्ते पर रखते हैं। जो चलते वहां नजर रखते हैं वे मंजिल पर पहुंचते हैं, और जो मंजिल पर पहुंचते हैं वो यशस्वी होते हैं।

उसको ऑप्शन नहीं, बाकी सब वालों को ऑप्शन है। उसको 24 आवर्स मेरे साथ रहना है, मुझे उसके साथ 24 आवर्स रहना है। हेलो, आपको काम सौंपा, आपके पास ऑप्शन है करना नहीं करने का। आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है। उसके पास सिंगल ऑप्शन है, उसकी ड्यूटी लगा दिया कि घर घर जा, जो जो बिलो 40 के हैं उनको पकड़। कि गुरुदेव के भूमि पर बुला हूं और वो आचरण अधूरा रख करके प्रवीण ऋषि जिंदा रह जाए तो प्रवीण ऋषि नहीं है। मैं गुरु चरण में बोलता नहीं हूं, बोलता हूं तो पूरा करे बिना रहता नहीं। लगाई मैंने उसकी ड्यूटी, चक्कु पहेटियस, जाना ये धम्मम च धैयम च भई, खेयन से कुशले में से अनंत नानी अनंत दंसी। इस शब्द को मैंने अवॉइड किया था इसलिए कि उनका मीनिंग समझने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। इन शॉर्ट में बता रहा हूं, अनंत मतलब एंडलेस, एंडलेस। हम सारे एंड को देखते हैं, इरो आखिरी परिणाम कही, हेलो इरो रिजल्ट कही, इतो करे रो परिणाम कही आखिरी में। तुम आखिरी पर नजर रखते हो, तुम आखिरी को जानना चाहते हो। और तीर्थंकर महावीर एंडलेस अनंत, नो एंड, वो देखते भी एंडलेस को है, जानते भी एंडलेस को है। हम सारे एंड वाले और जैसा हम जानते हैं वैसे हम होते हैं, जैसा हम देखते हैं वैसे हम होते। जम दंसई तम लही, मृत्यु को देखने वाला मरता है और अमरता को देखने वाला संलेखना में जीता है। जिसको हम देखते हो वही आपको मिलता है। किसी को प्रवीण ऋषि में गुरुदेव का गुरुदेव की भक्ति दिखती है, किसी को प्रवीण ऋषि में गुरुदेव का प्रवीण ऋषि में अहंकार दिखता है। अब जिसको जो दिखता है वो उसको मिलता है। प्रभु मूर्त देखी जिन तैसी, जैसी देखी वैसी नजर आई। अनंत को देखोगे तो अनंत बनोगे, अनंत को जानोगे तो अनंत बनोगे, एंड को देखोगे तो एंड ही हो जाएगा। खेयन ये से कुशले मय से अनंत नानी अनंत दंसी, जसन सिना चक पयटेस, जानाई धम्मं च धीम चपे। मैं 5 मिनट ले रहा हूं आपके, क्योंकि भरपूर मैंने छोड़ दिया लेकिन टच तो करना ही पड़ेगा। जानाई धम्मं च धीम चपे, सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे तो केवल परमात्मा का ज्ञान दर्शन और सील जान करके रुक मत, तेरे सवाल अधूरे हैं। महावीर को समझने के लिए तेरे सवाल अधूरे हैं। तुझे महावीर को समझना होगा तो तुझे महावीर का धर्म जानना होगा, महावीर के पेशेंस को गहराई से देखना होगा। जाना ही धम्मं च धेयं च पेहि, उनका धीरज की प्रेक्षा कर, उनके धर्म को जान और उनके धीरज की प्रेक्षा कर। क्या क्या पेशेंस है, क्या पेशेंस है। केवल सिंगल एग्जांपल देकर के बात को समेट रहा हूं। महावीर का धर्म कौन सा है,

ஜெயின் தர்மம், அஹிம்சா பரம தர்மம், மகாவீர்க்க தர்மம், மனோதரம். போலோ போலோ போலோ மாலம்த படையில தக்கைக்கு சமஞ்சதுக்கும் மகாவீர் கா தரமே தீர்த்தங்கர் தரம். தூசரே கோ தீர்த்த பனானா ஹி உன்கா தரம் ஹே. தரம் கேத்தே வத்து சாவோ தம்மோ. வஸ்து கா ஸ்வபாவ தர்ம ஹோதா ஹே, வியக்தி கா ஸ்வபாவ தர்ம ஹோதா ஹே, ஔர் தீர்த்தங்கர் கா ஸ்வபாவ க்யா ஹே, தூசரே கோ தீர்த்த பனானா, யே உஸ்கா ஸ்வபாவ ஹே. தாக்கு தர்மம் கை ஹே, சோட்டா சோட்டா பாத் மத்தே ஜகட்னு. தோடோ மன் ரா கிலாப் ஹோ கயோ கி மா தோ பட் கயோ, யே தாக்கு தர்மம் ஹே. ஔர் தீர்த்தங்கர் கா தர்மம் ஹே, தூசரே கோ தீர்த்த பனானா ஹே. ஜானாய தம்மம் ச தேயம் ச பேஹி கோஷாலக். தீர்த்தங்கர் மகாவீர் கோ சவால் பூச்தா ஹே, கனா சவால் பூச்சே, சல்தே சல்தே சவால் பூச்தே ரேதா ஹே. ஏக் ஜகஹ குச் சர்வாஹே கீர் பகா ரஹே தே, கீர் பகா ரஹே தே, ஹண்டி ஆக் ஜல் ரஹி தி, ஔர் பூச்சா மகாவீர் கோ, போலே கீர் பக்கேகே க்யா? மகாவீர் நே கஹா நஹீ பக்கேகி, ஹண்டி ஃபுட் ஜாயேங்கி, ஹண்டி फूट जाएंगे. अब वो गोशालक जो महावीर ने कहा वो होने नहीं देना. आदत क्या है उसकी? हेलो, जो महावीर बोले और चेला उनका, चेला किसका चलता, किसके पीछे? महावीर के. पूछता कौन? वही पूछता है. जवाब दिया तो कर्मा क्या करना? कि महावीर का जवाब झूठा है सिद्ध करना. तो रुक गया पीछे और गौन सारे चरवाओं को कहा, देखो उसने कहा है तुम्हारी हंडी फूटने वाली है, तुम्हें फूटने मत दो, तुम इसको फूटने मत दो, फूटने मत दो. तो उन्होंने क्या क्या पता है आपको? उस हंडी को चारों तरफ से खपचियों से बांध दिया कि हंडी फूटने नहीं चाहिए, हंडी फूटने नहीं चाहिए. लेकिन ऊपर से ढक्कन लगा दिया पक्का, इधर से कब्जी, ऊपर से ढक्कन, नीचे से आग, अंदर क्या होगा? स्टीम. और स्टीम होगी और ऊपर से प्रेशर कुकर लगाया हुआ है, फूट गई. ऐसे ऐसा पूछना उसने, ये होगा क्या? पूछा एक दिन, आज मुझे आहार में क्या मिलेगा? बोले बच्चे का मांस से बनी हुई खीर, बच्चे के मांस से बनी हुई खीर और खोटा सिक्का. बेचारा सोचे ये तो घमक जब हुआ, सब सेठों के गले में गया, सब सेठों के गले में गया, कोई मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, कुछ भूख बहुत लग रही थी, लौट रहा था, एक जगह खीर बन रही थी, गया लिया खाया. उसने भी दक्षिणा में सिक्का दिया, लेकर महावीर के पास आया और कहा कि मैंने तो खीर खाई है. बोले उल्टी करके देख क्या खाया है, और उल्टी करी तो उसमें मांस की उंगली नजर आई. महावीर जो बोले उसके विरोध में जाना है. ईश्वर थाने बेटो चेलो मिले तो थे, कितना दिन शांति से रहो ना. हेलो, जाना ही दमम चे दियम चे पे ही ना. इतना गोशाला उल्टा सुलटा करता, लेकिन महावीर ने कभी उसको कहा नहीं भाग हटाओ, मारी सुननी नहीं तो मैंने पूछे क्या नहीं, ईश्वर क्यों मेरी क्यों, मेरी माननी नहीं तो मैंने पूछे क्या नहीं. लेकिन वो पेशेंस, इसकी परीक्षा कर तब तुझे महावीर समझ में आएंगे,
बहुत बहुत अभिनंदन मुनोत परिवार का। अभिनंदन, और स्पेशल अभिनंदन इसलिए कि मेरे पास ये जानकारी पहुंची थी कि ऑर्गेनाइजर के पास आज का होस्ट नहीं था, आज का होस्ट नहीं था 2 दिन पहले, और बड़े टेंशन में थे। सब कई करा मारा सब करा, उनकी हिम्मत को नहीं, मारा सब ने कहा उनकी ताकत को नहीं कि मारा सब कोई मिले नहीं, करनो गई। और वहां प्रांजल बहन थी, और प्रांजल बहन ने बोले अब मैं ही कर लेती हूं भाई। ट्रेनर है, और इसलिए देखो उसने जो लगाया नीचे कार्ड, सब अपने अपनी पहचान लगाते हैं। वो डिस्कवर के ट्रेनर है तो उसने डिस्कवर का लगा दिया। और ऐसे अब बोलना नहीं बोलना, सुनना नहीं सुनना अलग बात है, लेकिन मुनोत परिवार में हमारे चेन्नई की बेटी आई हुई है, और उस परिवार की बेटी है, उस परिवार की बेटी है जिस परिवार ने प्रवीण ऋषि को इस ऊंचाई पर पहुंचाया। इस परिवार की 3 पीढ़ियां अरमिजा के ट्रेनर है। कितनी पीढ़ियां? 3 पीढ़ियां ट्रेनर है। दादी ट्रेनर है, बहू ट्रेनर है, और पोती ट्रेनर है, जो किसी ने कभी सोचा नहीं था, ना चेन्नई वालों ने सोचा था, किसी ने कुछ सोचा नहीं था। वो जिन्होंने किया, उस परिवार की बेटी, इनके घर के बहू मितानी, और ऐसे वो भी ट्रेनर है, वो भी पुरुषाकार के ट्रेनर है। इग्नाइट जो बुक लिखी उसके वो राइटर भी है। नहीं नहीं मुझे इंग्लिश आती तो मैं तुमको काहे को देता ना, तो राइटर भी है ऐसे आज। और मुझे लगता है कि खबर जब चेन्नई पहुंची होगी तो सारे खुश हुए होंगे, कान में बोले रहो, माइक में नहीं बोलो, टेंशन मत ले जाओ, थाने के रही हो, जो को कान में बोले जो को माइक बता दो नहीं बोलो, टेंशन मत ले जाओ, लेकिन नहीं बोल नहीं कर ना थे नहीं सुधर तो एक दिन माइक में बोलो, नहीं तो ध्यान में रख जाओ। हाँ थे आठे नशीला तो भी मारो यूट्यूब माते थाने घरे सुनाई दे जा, वो थे था को देख ले जाओ पीछे, है ना। मैंने महावीर जितना पेशेंस मारा मैं को नहीं है, महाराज जरा ज्यादा जब तक पेशेंस है तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन पेशेंस आई ना पीछे सबका सेशन शुरू हो जाएगा। अब थे देख लो था ना पेशेंट पूरा पेशेंट में काम करने के सेशन में काम करने थे तक देख लीजिए। और आज के नहीं ये दे देता हूं पहले, कल के यजमान अनुष्ठान के मनोज कुमार जी बाफना और नरेंद्र जी झंकारमल जी फिरोदिया, नरेंद्र जी झंकारमल जी फिरोदिया और मनोज कुमार जी निश्चल जी बाफना, अच्छा आलोक ऋषि जी मारा साहब का परिवार, वेलकम। वो धीरे से कान में बोल रहे, कन्फर्म करो जन्मदिन है कल, हाँ कल जन्मदिन है, ये क्या सूत्र लगाया है सब लोगों ने जन्मदिन, फिर आलोक ऋषि को भी ले आता ना साथ में, कल आ जाए ना। और नरेंद्र कुमार जी झंकार मुझे फिर दिया, 2 है कल के होस्ट है, और 2 कल के होस्ट है, इसका मतलब डबल इंजन लगेगा कल, अच्छा मतलब कल 2 सजावट आएगी, एक इधर एक उधर।

0: ओम नमो वीराय।
1: चलारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चलारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्म लघुत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरण दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।